सन्मान योग सत्संगी जनों, पिछले दिनों तो ही सिख जगत गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पर्व प्रकाश पर्व या अवतार पर्व भी पाकते हैं। सतगुरों का वो दिन जिस दिन साहिब इस संसार विच प्रगट हुए, प्रगट दिहाड़ा वो मनाया जा रहा है। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरां दे बख्शे हुए उपदेश साडे हिरदे वसन जी, असीं गुरु की गल नूं समझ के सच्चा जीवन जात सीखीए जी। तो आप संगतां दा धन्नवाद है। मैनूं लगदा सी कि अज संगत नहीं आएगी क्योंकि अज अमेरिका की धरती ते उहनां दा अपना खास दिन है, छुट्टी का दिन है, पर आप जी जितने भी आए हो जी आयां नूं आप जी का धन्नवाद है। कल फिर इस समय मिल बैठांगे जो गुरु कराएगा, मिलजुल के साहिब की कीर्ति करांगे जी। फुलां चुकां दी की मां आनंद साहिब दा जाप करांगे।

चारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे

पीयूसी जाय न जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी। माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना। जो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी। फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए। केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहे आ जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याइया, तुद बिन सिद्धी किनै न पाईया, कर्म मिलै नाहि ठाकर हाइया। आखन वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखने औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए, रहाउ साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई।

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह मेरे संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिज कागे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर जिक संभाहि ठाकुर काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडा वै सैकुसा तिस पाछे बचरी चरिया। इन कवन खिलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सदबल जय।

और सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नेचल करता सोई, तुद आपे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा, तू कर

किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हव देखा तह डूबी अले।

दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक के पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

रंक भयो राव कही कूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, पुत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप सुय।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

तत्काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट चाह चव सकै न कोई।

0: सुनहार सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। चक्र चेहने

सो हर सदा सरेवियै जिस करत न लागै वार आडाने आकाश करू खिन मह ढाहे उसारण हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार

गुण गावां दिन रात गुण गावां दिन नानक चाउ एहो नानक नानक चाउ एहो नानक चा हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत चाढ़ बिखै बिख माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संग तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की गुर राम दास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की।

काखिए कै दर्श तुहारु नानक उन संग मोहे उदारु सुखमनि सुखमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला श्री सिमरै जिने आप सिमराई नानक ताकै लागौ पाई प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माही समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवानु प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु प्रभ को सिमरह से बेमहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

शरण तुम्हारी आयु, नानक के प्रभु साथु अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, कह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुए अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जप तै पार पराही। अनिक बिघन जय आए सिंगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कुसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैडै मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जाह पंथ तेरा को न सुझानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाप्यान तपत बहुकामू, तै हर के नाम की तुम ऊपर छामू। जात्रिका मन तुझ आकर कै, तै नानक हर हर अमृत बरकै।

आश्रय जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंगी कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाइय, संत की सेवा नाम त्याइय, नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विज्ञान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कराती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे, अग्न वाहे होमत प्राण, कनिक सुबह वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी होम मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नान गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्व गुमान न मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तू है बहु देह अनीत, शुद्ध का हुई काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियान पजम का पव व्यापै, अनिक जितन कर तृष्णा त्रापै, एक अनेक अग्नि बुझै, कूट पाव दरगह नहीं सिजै, छूट सुना ही उपयाल, मुहि व्यापै माया जाग, अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन्तिन नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाई, चार पदार्थ जिको मांगै, साजना की सेवा लागै,

छूरे। जे को जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रदान सा समझा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा। जा का मन हुई सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पिक है सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन समृष्टिता नानक पापुन नहीं लिपा। निर्धन को धन तेरो नाऊ नितावे कौ नाऊ तेरा थाउ। निमाने कौ प्रभ तेरो मानु सगल कटाकु देवो दानु। करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी। अपनी गातमित जान हो आपे आपन संगा प्रभराते। तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक कवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरया। सगल उद्दम है उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी हर को जस नरसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा संभाल। जिनकी आतिश चीत रख नानक निभही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू सासवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद आरू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पल कमुला। जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कर नित रसना तिसे त्याग वर संगरचना। ऐसे दोग मूढ़ंद ब्यापे नान काट लिहु प्रव्यापे। आदंत जो रखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निड पावे तास्यो मूड़ा मन नहलावे। जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जान तूरे। जाकी टहल पावे दर गह मान तिसे विसारे मुग्ध जान। सदा सदैव भूलन हार नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचै सा चोट चूट संग मचै। जो चटना

स्वान अंतरगण बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसी तरह थाहा जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसी मार्ग पावे कर गह लेह ओढ़ निभावे कहां बुझारत बुझै डूरा निष्कहिए तू समझै पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तौ भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई तासु प्रीत बलवा के गृह भीतर बसे अनंद केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिखो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग अनुसुआए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तूले पाछ पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक भी ना दे दस भी हिरले तो मूड़ा कहो का करे जिष्ठा कुरुस्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कच बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न हुवै जिसकी बस्त तिसे आज्ञा राखै प्रभ की आज्ञा मन माथै उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर हुवत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहे ताको हाथ न आवै केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पिक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभावह मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बृथा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृते सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाऊ रहत अवर कचवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर पेक न काऊ पीन।

किस किसी तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक गुण जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपह मानै आपह आप आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियान सगल ते रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिसले लड़ लाए थान तनंत रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदि जे प्रसाद छत्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसै त्या कतवर लुभावह जे प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पहर ताका जस गावीजय जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पद चेती घर जावै जे प्रसाद अरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर तस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको ना पहुंचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद आपूकन पैरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सह त्याई तिसै त्याई जो एक अलख इहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरव सदा अनूप जे प्रसाद तिरणी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुन है करण नाद जे प्रसाद पिखै पिसमाद जे प्रसाद अम्बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण पल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभ त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनु बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मथु तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किनकै कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी साध कसंग मुकूजल होत साध संगमल सगली कोत साध कसंग मिटै विमान साध कसंग प्रगटै सुज्ञान साध कसंग बुझै प्रभ नीरा
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਬਰ ਪਰਮ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੁਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮੰਤੀ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਲਾ ਕੁਲ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਣਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੂ ਪਰਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ
ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्व श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उरतार है जो अंतर नाम सर्व में पिख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख नेत्र साध की टैल संसंगेत कर्ण सुने काहू की निंदा सब ते जाने आप उसको मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकूट मजे को ऐसा परस वैष्णु सोजी सुपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं बच है केवल भगत कीर्तन संग्राच मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हुवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनस सगला भरम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सास संग पापा मलक हुए तिस भगवती की मातूतम हुए भगवंत की टैल करे नितनीत मन तने अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नामा तुम मैं शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमरत बुझै मूल सुखम मैं जानै अस्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा सुन पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेम मुक्त पात्र को उतारै सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काऊ जुगत कितै न पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस निद्रि आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परै सगल संगा तुम दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सु कहावै तैसा हरख तैसा सुग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मानु तैसा अभिमानु तैसा रंक तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन्नाओ वापे करन करावण जोग प्रभाव है सोई फुन होग
अस्तर व्याप हो अंतत रंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगासु पार ब्रह्म करता अविनाशु सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक पुस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रचि बहु विधानिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिस्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नान करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाही कई कोट परदेश परमाही जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरक निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किनर पिशाच कई कोट भूत परे शुक्र मिर्गा सब ते नेरै सब ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरु निवासी कई कोट जन्मै जीव अमरै कई कोट बोजूनी फिरै कई कोट बैठत ही खाए कई कोट कालै थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगै सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होया सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर कंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पस्त्रि उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने वपात प्रभते हुए ब्रह्मा समात ताकंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो वता तम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पी वह अमर भय सत सत ही जी वह कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई होग किन मैं ताप थापन हारा अंत नहीं किछ पार अवारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सम मै रिहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्ति राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पथ सुधारै आप करै अपन बिचारै दुहां सिरिआं काप स्वामी खिलै बिकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहु मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत बिख्या मै रचै ये जानते अपने आप बचे परमे भूला दै दिस्तावै निमक माय चार कुंठ फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज
पार ब्रह्म गरीब निवास जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दादिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बना ही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई पुन थियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरख रंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू निरत करे बपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रवरा कहते ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जुन भरमै परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवै नचावे जो तिस भावे सोई हुए नानक दूजा अवर न कोए कबू साध संगत उपावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन अमृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जले आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसकै अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जिन मरै बोजून परमावै धन भूमका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तिन समान का संग न जावै बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर गए कौ कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रिंजा का मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कूटता वै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिखिया के करै न तृप्तावै खप खमरै बिना संतोख नहीं कूरा चै सुपन मनोरथ वृत्ते सब काजै नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भागी किसै प्राप्त हुए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसकै हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखै करै बवेक आपह कपह अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनु अपन विस्तार सब कछु उसकाउ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए तान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार मन में अमन अपने माए नानक कीमत कह न जाए
सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब की ना कोट मधे किने बिरले कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत पिनिंदा नानका भौर भौर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै संतन कै दुखन सर्प जून पाए संत कै दुखन त्रिगद जून किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाए नानक संत पावै तौ पीगत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक टिकन न पाए संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत भावै तां उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लागै संत के दुखी कौ सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुखते टरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावै तां लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहि आपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी गवर न राखन हार नानक संत भावै तां लै उभार संत का दुखियों बिल लाए ज्यों जल विहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला ज्यों बुआड़ तिलखे तुमाहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योति भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिलै सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पुज्जै न आसा संत का दुखी उठछलै निराशा संत के दुख न तृष्टै कोए जैसा भाव है तैसा कोई होए पै किरत न मिटै कोए नानक जानै सच्चा सोए सब घट तिसके उकर नैहार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तुत करो दिन रात तिसै ते आहु सास गिरा सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथी अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करै तिस आपो नाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो से अनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम हो जाए अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक कै भगवान जिसकै दिया रह अघाय बौर न तृष्णा लागे आए मारे रखे को आप मानु कै किछ नाही हाथ तिसका हुकम सुख होए तिसका नाम रखंट परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ्न न लागे कोए स्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मत्था बड़भागी ते जन जग माहे सदा सुधार के गुण गाहे राम नाम जो करै विचार सेतन मंत गणी संसार मंतन मुख बोलै हर मुखी
सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की उसो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपना सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सात संग हर हर जस कैत सर्व रूप त्योहर जन रैत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रिष्ट मैं सोई निर्वाण एक उपर जे जन की आसा तिसकी तटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मन चित आवै सो संत सोहेला नहीं डुलावै जिस पर भी अपना कृपा करे सो सेवको किस ते डरै जैसा सतैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तब सब बुझिया जब देखूं तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल न किच जन्मे न किच मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगुण मैं आप अनेक जुगत रच थाप थाप अपना सीना ही किच खंड धारण धारे हो ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जपहि निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करह बड़ पागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए हुवै सो होए करनै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माए समाए कोई सुख निदान नु बने आए आप उसको आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गाटन हार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभया पे आप अपन की या कछु न होए जिस प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरे किच काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होए ना ही मोह है प्रभ की जो सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किच तिसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता वह जे को हुए वह दातार किस देन हार जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थम्मन त्यों गुरु का शब्द मने अस्थम्मन जो पाखाना चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माए नानक पद सेठी कर जाहे जिस वक्र को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मां लियो मन मूल राम नाम हृदय में तूल लाद के संतै संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोई भुखू जल हर दर गै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनेक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संतै दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवता दारु सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका उकर नै जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा
सदा दिन रहनी, सब त्यूच निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया। नानक सो जन निर्मल तिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भग सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय एक हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, सच इद्र सचा आकार, सच वरतै सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सूजन सत समाता। सलोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसह बुझाए नानका, जिस हो वै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख, मानु की तू प्री त्याग, तिस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शन, साथ तेरे की चरणी पाओ। नानक कै मन हो नराओ, मन सा पूर्ण सरण जोग, जो कृपाया सोई हो, हरन भरन जाका नेत्र होर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनदरु मंगल सजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै, राज में राज योग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन्नत न पाया।

सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जिन दास नाम ध्यावै से त्यो गुण मैं जाको परमाई जिन मरै फिरिया वै जायूच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेकरै करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माए पूरे अपूर्ण सब ठाए नाना विदगर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहि समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत हुए आप सत की है सब सत आपे जाने अपनी मिट गत जिसकी सिर सुकरण हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योति भाव है सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बूझ साया स्वात प्रभ कै रंग राज जन रही गुरु कै वचन पदार्थ लही वे दाते दु कट नहार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुक्ता सुरत सत सत जस सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया है ते निरपौ हुए बसाना जिसते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्ना कहना जाई बुझै बुझन हार बवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक सास सास संभार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को कू न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी में कल रख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काट ताप ताक और राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बपात तिसके करत बिरते जात मार न रख है अवर न कोए सर्ब जिया का रख सुए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल खबिड़ानी बारम बार बार प्रभु जपिय पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकिच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामू रूप रंग नामू सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्तानी मंथन नाम मैं नाम समानी उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जाजे बा दिन रात
प्रभ अपने जन की नींदास करे भगता तुम कहचाए प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कैक न जानू आठ पहर प्रभ सहजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर स्वपा मिटावे अवर सियानब सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख विडभागी हे सतगुर सिख का हलत पल सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन विचै सतगुर कै पाव तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सह सियानक लया ना जाइये नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेकत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गै गवे सुनकर वचन करण आघानी मन संतोखा तुम पतियानी पूरा गुर अख्योजा का मंत्र अमृत दृष्ट बेकह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए जेवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण भवेक काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर परम निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन्हें न पाई अनिक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने

चार कुंट दह दिशे समाए, तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत मैं देख, शशि अरसूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोल न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाई गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धार्यो स्वामी ओत पोत, गुरु प्रसाद परम का नास, नानक तिन में इहो विसास, संत जना का पिकन सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुबचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसी बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सकली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार, अनिकला लकी नह जाहे, जिस भावै तसले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर गज साप जनाए, ना ते जनिया बुझाए, सर्व भूता वरतारा, सर्व नैना पिख नहारा, सकल समग्री जा का तना, अपन जसा पी सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कै मद लिपतो रह, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए, इस्ते हुए सुनाही बुरा और कहो, किने कछ करा भला कर तू, तत निकी आपे जाने अपने जी की, आप साज धारी सब साथ, चोत पोत अपन संगराज, ताकी गत मिट कही ना जाए, दूसर हुए ता सोजी पाए, तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक क्यों जान, जो जाने तिसदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत बतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का यह सुवाऊ, जन कै संग चित आवै नाऊ, आप मुक्त मुक्त

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार गुरु निकट कर पेक, साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आसन त्याग उतरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहु, सास संग गण सागर तरहु, हर तन के परलेहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप त्रैलोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाद वाजय, सुन सुन अणद करे प्रभु गाजय, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उतरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम सा संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रस न कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधानी का गर ची सुख मनी, सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सोत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो गयावन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मत सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ये फल किस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मैता की गत होए, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कूट अपराध सा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जा कै मस्तक कर्म प्रपाए, सा सर नानक ते आए, जिस मन बसै सुन लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै, निर्मल सोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै भरमु, साध नाम निर्मल।

सुखमनी सुखमृत प्रवनाम, भगत जना कह मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे वह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एतरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ियै बहुत अनूप ताकिया गला कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथै घड़ियै सुरत मत मान बुद्ध तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठगे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै है केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विबसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार।
ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟ

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋ ਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਆਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਹਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਹਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਫਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਤ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਬਰੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜ ਵੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗ ਵੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜ ਵੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ
නමෝ සස්ත්‍ර පාණේ නමෝ අස්ත්‍ර මාණේ නමෝ පරම ගයාතා නමෝ ලෝක මාතා අපි කී අපර්මී අපෝගී අපුගතේ නමෝ ජෝග ජුගවේ සෝරං පරම ජුගතේ නමෝ නෙත නාරායණේ ක්‍රූර කර්මේ නමෝ ප්‍රේත අප්‍රේත දේවේ සෝ ධර්මේ නමෝ රෝග හර්තා නමෝ රාග රූපේ නමෝ සාහ සාහං නමෝ පූප පූපේ නමෝ දාන දානේ නමෝ මාන මානේ නමෝ රෝග රෝගී නමස්තං ඊස්වනානං නමෝ මන්ත්‍ර මන්ත්‍රං නමෝ ජාන්ත්‍ර ජාන්ත්‍රං නමෝ ඒෂ්ට ඒෂ්ටේ නමෝ තන්ත්‍ර තන්ත්‍රං සදා සච්චිදානන්ද සර්වං ප්‍රණාසී අනුපේ අරූපේ සමස්තෝ නේවාසී සදා සේදදා බෝධදා බිරුදකර්තා අධෝ උරුද අර්ධං අගං ඕගහර්තා පරං පරම පරමේශ්වරං ප්‍රෝෂපාලං සදා සර්වදා සේදදාතා දයාලං අශේදී අපෙහිදී අනාමං අකාමං සමස්තෝ පරාජී සමස්තස්තතාමං තේරාජෝරචාචරී ශාන්ද ජලේ හැ තලේ හැ අපීත හැ අපේ හැ ප්‍රභු හැ අජු හැ අදේශ හැ අපේස හැ පුජංග ප්‍රයාත ශාන්ද අගාදේ අබාදේ අනන්දී ස්වරූපේ නමෝ සර්වමානේ සමස්තී නිධානේ නමස්තවං නිරනාථේ නමස්තවං ප්‍රමාථේ නමස්තවං ආගංජේ නමස්තවං අපංජේ නමස්තවං අකාලේ නමස්තවං අපාලේ නමෝ සර්වදේසේ නමෝ සර්වපේසේ නමෝ රාජ රාජේ නමෝ සාජ සාජේ නමෝ ශාහ ශාහේ නමෝ මාහ මාහේ නමෝ ගීත ගීතේ නමෝ ප්‍රීත ප්‍රීතේ නමෝ රෝක රෝකේ නමෝ ශෝක ශෝකේ නමෝ සර්බ රෝගේ නමෝ සර්බ භෝගේ නමෝ සර්බ ජීතං නමෝ සර්බ පීතං නමෝ සර්බ ඥානං නමෝ පර්මතානං නමෝ සර්බ මන්ත්‍රං නමෝ සර්බ ජන්ත්‍රං නමෝ සර්බ දෘසං නමෝ සර්බ ක්‍රේසං නමෝ සර්බ රංගේ ත්‍රපංගී අනංගේ නමෝ ජීව ජීවං නමෝ බීජ බීජේ අඛිජේ අපිජේ සමස්තං ප්‍රසජ්ජේ කෘපාලං ස්වරූපේ කුකර්මං ප්‍රණාසී සදා සර්වදා රේද සිදං නේවාසී චර්පට ශාන්දතු අප්‍රසාද අමෘත කර්මේ අමෘත තර්මේ අඛල් ජෝගේ අචල භෝගේ අචල රාජේ අටල සාජේ අඛල් තර්මං අලඛ කර්මං සර්වං දාතා සර්වං ඥාතා සර්වං පානේ සර්වං මානේ සර්වං ප්‍රාණං සර්වං ප්‍රාණං සර්වං පුගතා සර්වං ජීවතා සර්වං දේවං සර්වං පේවං සර්වං කාලේ සර්වං පාලේ රුවාල ශාන්ත දුව ප්‍රසාද ආද රූප අනාද මූරක අජෝන පුරුක අපාර සර්වමාන ත්‍රිමාන දේව අපේව ආද උදාර සර්බ පාලක සර්බ කාලක සර්බ කෝපන කාල යත්‍ර තත්‍ර විරාජහි අවතූත රූප රිසාල නාම ඨාම නා ජාත ජාකර රූප රංග නරේඛ ආද පුරුක උදාර මූරක අජෝන ආද අශේඛ දේශ ආවුර නපේස ජාකර රූප රේඛ නරාග යත්‍ර තත්‍ර දේශා විසා හොය ෆැලයෝ අනුරාග නාම කාම බහින පේකත තමහු නැහ ජාහේ සර්බ මාන සර්වත්‍ර මාන සදෛව මාන තතාහේ ඒක මූරත අනේක දර්ශන කීන රූප අනේක කේල කේල ආඛේල කේලන අන්තකෝ ෆෙර ඒක දේව පේව නා ජානහි ජෙහ බේද ඔර කතේව රූප රංග නා ජාත පාත සෝ ජානයි කෙහෙ ජේව තාත මාත නා ජාත ජාකර ජනම මරණ බහින චක්‍ර බක්කර ෆිරැ චතුර චක් මානයි පුර තීන ලෝක චෞදහ කේ විඛය ජග ජාපහි ජෙහ ජාප ආද දේව අනාද මූරත තාපයෝ සබය ජෙහ තාප පරම රූප පුනීත මූරත පූර්ණ පුරුක අපාර සර්බ විශ්ව රචයෝ සුයම්භව ගඩන පංජන හාර කාලහීන කලා සංයුගත අකාල පුරුඛ ආදේශ ධර්මතාම සුපරම රහත අපූත අලක අපේස අංග රාග නාරංග ජාක හැ ජාත පාත නාම ගර්භ ගංජන දෝෂ්ට පංජන මුකත දායක කාම ආප රූප අමික අන ඕස තත ඒක පුරුඛ අවතූත ගර්භ ගංජන සර්බ පංජන ආද රූප අසූත අංගහීන අපංග අනාතම ඒක පුරුක අපාර සර්බලායක සර්බකායක සර්බකෝ ප්‍රතපාර සර්බගන්තා සර්බහන්තා සර්බතේ අනපේඛ සර්වසාස්ත්‍ර නා ජානහි ජෙහි රූප රංග අර රේඛ පරම බේද පුරාණ ජක නේත පාකත නේත කෝට සිමරත පුරාණ ශාස්ත්‍ර නා ආවහි වහ චෙත මදු භාර ශාන්ත තුව ප්‍රසාද ගුණගන උදාර මහිමා අපාර ආසන අපංග උපමා අනංග අනපව ප්‍රකාශ නිසදෙන අනාස ආජාන බාහෝ ශාහන ශාහෝ රාජාන රාජ පානාන පාන දේවාන දේව උපමා මහාන
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन भाढ्य चाचरी छंद द्वप्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चित्र चक्र करता चित्र चक्र हरता चित्र चक्र दाने चित्र चक्र जाने चित्र चक्र वर्ती चित्र चक्र भरती चित्र चक्र पाले चित्र चक्र काले चित्र चक्र पासे चित्र चक्र वासे चित्र चक्र माने चित्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशिज दिशह के अभिज पिशह के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के आदित्य शोक के अवतूत वर्ण के बेभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्म तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा आभरण के जगतं कृति है के शत्रंग शत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अन पाओ अनूप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफ बुल गुना है के शाह अनशाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन दो है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्या है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र गंता है के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फाही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशो सलाम है सलीकत मुदा में गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान जमीन जमान तमीजुल तमाम रजू अल निधान हरीफ अल अजीम रजाइक यकीन अनेक उतरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपहूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अचेज है आशूत है किनर्कं प्रणाश है पृथ्वीवल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है युवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंत है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट शांत अप्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते प्रमासं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांतो त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुसलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहेंद है के राजक रहेंद है क्रीमुल कमाल है के हुस्न जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है रासुल फिकान है कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहेब किरा है के नरकुं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपीख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलं प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजुब स्वरूप है कि अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के आचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शंतु प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर आगंजो हरनर प्रपांजो अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशे जो अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनास कृत तर तुरास अजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चेत चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनचा जुगात अनरंज बात आन टोट पंडार आन ठाट अपार आठ धर्म आतठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तुआ प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणाकर हैं विश्वम्ब्र हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खाल खंडस हैं परते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणाकृत हैं अकृताकृत हैं तरणी त्रित हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजबाकृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खालकायक हैं विश्वम्ब्र हैं करुणालय हैं निरपनायक हैं सर्वपायक हैं भवभंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ताकार हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बास हैं जस के जस हैं भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम ततं अततं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत
अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनाश अकाश गंज अपंज अलख अपख काल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजो नियमो नि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं तुआ प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारी कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत सीसना जात बिचारे इते भय तो कहां भय भूपत अंत पाओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान कपेख है पौन आहार जति जत तार सबै सुबचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरयार अबचार एसार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फने दिन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इश नानक जादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बेसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बाग ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेर तान कौ पूजन तहायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेर तान कौ पूजन तहायो
ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰਿਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਐ, ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰਿ ਹਉ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ

नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी। इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नवनिध। तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारा। जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचे कर गावह। गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच त्यावहे। सचो त्यावै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे। आनंद सुनो वडभागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे।

0: तू सच्चा सास सुवालियो जिनकी थी सो पार पया कहो तो नानक करते बता जो किसी करना सो कर हमारा दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं

0: सर्कीत्यतम
1: मेरा सबो दुख गवाए जियो विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया

ठाक न पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साध है, सच नहीं केवल कर्म अराध है। पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिस मैं मनुआ रे।

को विका, फलोहार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन औधूता, एहनिस जागै कब है ना सूता, जागत जाग रहै लिव लाए, गुर परचै तिस काल न खाए, अतीत भय मारे बैराई, प्रणवत नानक तह लिव लाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जातो भीतर आने, बरती बरत रह निकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम, तीन भवन मह को जाने, सब सुच संयम साच पछाने, तीरस तरवर समुद्र किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डर डर मरे न बूढ़े कोए, निडर गूढ़ मरे पत कोए, डर मह घर घर मह डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे ठावे लह पावे, चौदस चौथे ठावे लह पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहया लिव लाए, अमावस्या चंद गुप्त गै नार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन ज्योत तिहु लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुर ते दिसै सो तिस ही माहे, मन मुख भूले आवह जाहे, घर दर थाप तिरथान सुहावै, आप पछाणै जा सतगुर पावै।

वार वार दिन सरैन तिवै संसार आवा गौण किया करतार निचल साच रहया कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सृष्ट साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चुकै सच समाए जाकै मस्तक लिखिया लेख ताकै मन वसिया प्रवेक रहाओ सृष्ट उपाए आपे सब वेखै कोए न मिटै तेरे लिखै सिद्ध साधिक जे को कह कहाए परमे भुला आवै जाए सतगुर सेवै सो जन बूझै हौमै मारे तां दर सूझै एक स्ते सब दूजा हुआ एको वरतै अवर न बिया दूजे ते जे को जानै गुर कै शब्द हर दर निशानै सतगुर भेटे तां एको पाए विचों दूजा ठाक रहाए जिसदा साहिब डाढ़ा हुए किसनो मार न साकै कोए साहिब की सेवक रह सरनाई आपे बख्शे दे वडियाई तिसते उपर नाही कोए कौन डरे डर किसका हुए गुरमति सांत वसै शरीर शब्द चीन फिर लगै न पीर

एक न चित्त है दूजे लुबाही, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय पावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते भेख कर है भेख धारी, भाव भाव भरम है काची सारी, ऐथे सुख न आगे हुए, मन मुख बुए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे भरम चुकाए, घर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, ए थित्ती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंध गुवार, थित्ती वार सेवह मुगद गवार, नानक गुरमुख बूझै सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए। बिलावल महला पहला छंत दखनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंदन वेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार धरी हर लिव लाई राम, लिव लाए हर स्यो रही गोयल, सहज शब्द सिगारिया, कर जोड़ गुर पै कर बिनंती, मिलहु साच प्यारिया, धन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंदन वेल सुंदर, देख फिर साधारिया, सच

राम तन साच संगूती हर संग सूती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसिया सत गुरु हम मिलिया दिन रैन घड़ी न चसा विसरै सास सास निरंजनो शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका भाउ भंजनो ज्योत सबायड़िए त्रिभवन सारे राम घट घट रव रहया अलख अपारे राम अलख।

राम। अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूझे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभवन सोझी सूझे। रह अतीत

मेरे हर प्रभ भावै सो करै, हर रंग हर जापै राम, जन नानक सहज मिलाया, हर रस हर त्रापै राम। मानस जन्म हर पाइयै, हर रावण वीरा राम, गुरमुख मिल सुहागणी, रंग हुए कनेरा राम। जिन मानस जन्म न पाया, तिन भाग मंदेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभु, नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया, मन तन

राम सफल जन्म हर पाया, नानक प्रभ की नाराम। बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभ सच

मिल इकत्र हुए सहज टोए मन प्रीत उपजी माझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मिली प्रभ करण कारण जुगो।

राम आनंद अनदिन वजह वाजी दिन सरैन उमाहा तहरूग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अदारा सुन सखी।

निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले।

मुखो चतुराई मोहे नाहे रिझावो कह मुखो नह चतुर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप न नैन बंके जह पावे तह रख तू ही

राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराई है राम नानक भगत भाउ कर दयाल की जीवन पद पाई है राम श्री गोपाल ना उच्च रह बल गई ये दो चारण रसना राम प्रभ भगत वचल नह सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख न जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिष्टा कृम भस्मा राम लाए बिरहो भगवंत संगे हुए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौमै बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोली है हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बिलावल महला पंजवा हर खोजो

के राम अमृत रस हर पाया बिख्या रस फीके राम नानक जल जलह समाया ज्योति ज्योत मीके राम अमृत रस

अरसोहते जल जोगंते बहुपात पचा सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण कित हम जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कारयोग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासों अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करिए गुर इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकद्दस तिन्नगी गोद आनंद माने गुरु प्रसाद संगत जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इना विशेष गुरमत समागमां विच आप जी दी गुरबाणी कीर्तन सेवा करन दा सुभाग अते आप जी दे दर्शन करन दा सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश कीता है। बाणी दा कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन दी महानता, यह कीर्तन दी वडियाई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन दा आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसीं रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी तों दूर बैठे श्रवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावें गुरु रामदास जी नूं प्यार करने वाला, उस धर्म नूं प्यार करने वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, ते उस लई इउं नहीं लगदा कि असीं दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हां। उस लई इउं लगदा है कि धन गुरु रामदास पिता दी गोद श्री दरबार साहिब विखे बैठे हुए हैं। ये बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहिया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हां नानक कस मल जाए नाये रामदास सुर। तन तन रामदास गुर जिन सिर आत्मे सवार। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसीं कन्नां दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उत्थे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इस लई सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी सरवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे काटे जम की फंदा। करो कृपा सारी।

गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई ये पवित्र पावन गुरु मंत्र गुरु नानक पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है। यो गुरु मंत्र है जिस दे जपन नाल जन्मा जन्मा दी पापा दी मैल इस मन दे उत्तों उतर जाती है, क्योंकि सतगुरु जी सानू दसदे ने इस मन को जन्म जन्म की मर लागी काला हुआ स्या हो, जिदा स्याही होंदी काली ना। सतगुरु जी कहिंदे ने मन इहो जिहा बणिया पिया है, इसे करके संसार दे विच इह विकार भोगदा है। विचार माड़े ने परत दर परत इस मन दे उपर पापां दी मैल चढ़दी रहिंदी है। वाहिगुरु दा सिमरन इस करके है, वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागावै, सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते है। आवाज देनी है, उठ उठ भाई जाग। इस करके सिमरन करना है कि सुता होया मन जाग जावे। जदों मन सुता होया जागेगा ते उस वक्त इस दा पार उतारा हो जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत आओ पवित्र पावन शब्द सरण करिए। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा।

आओ गुरु प्यारे सत्संग जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अते वैसाखी दा पूर्व ए दीवान इना खुशियां दे विच सजे हन। संगता बड़ी दूर दूर चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवार, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगता। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरे सरण दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी, आने वाले समय दे विच संगता दे सारे कार्य आप जी ने संवारने। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी

0: सन्मान योग सत्संगी जनों, मैं जिन्हां शब्दों का कीर्तन कर रहा हाँ, ये शब्द आप संगत विचों ही संगत वालों कुछ बच्चों ने मैं हुक्म किया, मैं शब्दों का गायन करके सुनावा जी। सतगुरु बख्शिश करे जो गावया सुनिया है इसकी विचार साढ़े हिरदे वस। तो एक शब्द की हाजिरी होर मैं आप जी के नाल मिलकर लगावांगा जी। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, इस शब्द का मैं हुक्म होया सी बच्ची वालों। तो पिछले दो दिन तो तीन दिन तो दस रहे आप संगत की सेवा में हाजिर हैं। अज का इस फेरी का सतगुरां दे इस मुबारक दरबार के अंदर आखिरी प्रोग्राम है। जदों जदों भी मालक की बख्शिश होवे मैं हाजिर हुंदा हाँ। प्रबंधक वीरां दा मैं हिरदे दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा हाँ वीर नरेंद्रपाल सिंह जी ते उहनां दे समूह जिन्ने भी साथी हन, मेरे अति सत्कारयोग एन जी डॉक्टर पाठिया, कमलजीत कौर पाठिया, जिन्हां दे सहयोग नाल आप संगत दी सेवा दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। आप जी बहुत प्यार देंदे हो, बहुत माण देंदे हो, मैं थोड़े प्यार का सारिया का माण का मैं ऋणी हाँ, मैं थोड़ा कर्जदार हाँ। जिमें जिमें समा मिलता रहेगा मैं आप संगत की सेवा च हाजिर होवा। तो जिमें कि आप जी ने दस्या है, कल दीआं खबरां विच भी आप जी ने पता लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है इसका एक होर रूप बदल के आया है, जिस तों आपां सुचेत रहना है। अपना भी ध्यान रखियो, दूसरों का भी ध्यान रखियो। डरना भी नहीं, पर बेपरवाह भी नहीं, लापरवाह भी नहीं होना। करते तो भरोसा रखना, वो रखिया करे। घर बार तेरा प्रवासा, तू जन के है संग। पर सुचेत जरूर रहना है, अपनी सेहतां का ध्यान रखियो। जरूरत अनुसार ही बाहर निकलियो, ये तो घरे रहो, बच्चों के रहो, बच्चों के नाल कोई गुरमत दियां गल्लां करो, गुरु दियां गल्लां करो, कोई चंगियां गल्लां करो, कोई चंगियां बच्चों गल्लां सिखाओ। तो पिछले समय तो सारा संसार संताप भोग रहा है, मालिक की क्रोपी है वो जाने, पर आपां सुचेत रहना है। और जिन्होंने वैक्सीन लवा ली है ठीक है, जो नहीं है तो लवा लो, दवाई असर तो कर दी है। तो मैं तो भाई साहब कल दे लवा के आया, मैं बूस्टर लवाया होया, इन्होंने सैकंड डोज लवाई हुई, बुखार सानू दोनों नूं चढ़िया होया। पर जो मैं अक्सर मैं बेनती करता रहिंदा हाँ, कीर्तन बंदगी है। गुरु नानक साहब ने कोई होर कर्म नहीं किया परमात्मा की बंदगी वास्ते, ना घर छड़ के जंगलों च गए, ना भुखे रहे, किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं किया, सिर्फ तो सिर्फ कीर्तन किया। सो कीर्तन ध्यान रखना, आपां कन रस नहीं बनाउणा, इबादत है, बंदगी का तरीका सानू सतगुरां ने बख्शिया है। तो जदों बंदगी करदे होइए तो मालक की मेहरामत हुंदी है, जे वह सतगुरु एकाग्रता बख्श देवे तो ध्यान रखना इस गल का, उसकी कृपा तो बिना एकाग्रता भी नहीं होंगी। जे एकाग्रता बन जाए तो फिर दुख सुख भी भुल जाते हैं। तो तुहाडियां संगतां दीआं असीसां दा सदका आप संगत की सेवा की है। एक शब्द का होर गायन करके फिर समाप्ति होगी। अगला जो भी प्रोग्राम है वह आप जी ने प्रबंधक वीर दस देंगे। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ये बच्चों ने मैंने हुक्म किया, मैं किसी वे ने कहा हों तो फिर भाव मैं, क्योंकि मैं कई बार लगता है कि मैं उन्होंने शब्दों का ही कीर्तन कर रहा जोड़े थोड़े दिन पहला सुनाए से पहला भी सुनाए। पर कई बार मेरे न एक इस तरह की घटना हुई, मैं मिसी सागा टोरंटो कीर्तन कर रहा सी, एक बच्चा बार बार एक शब्द वास्ते कह रहा है, मैं पता नहीं शब्द विसरिया होया सी, मैं ध्यान नहीं दिता, मैं शब्द का गायन ना किया। तो समाप्ति होगी, अनंत साहब भी जाप हो गया, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹਨ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
1: ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ